आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवा

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसमी दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वासी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जे पांडे, और बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत बधाएं दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया गई माया तोहे गई, पछते पछताया।

फिर होए ना बिनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कबे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए किरपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होमे बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन लै शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसमें पावे, आपे बगसे मेल लै आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जमकाल सिर मारी, पाप बकार मनूर सब लद्दे बहु पारी, मार्ग बिगम डरावना क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उबरे हर नाम उधारी। श्लोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वारो वार, मोठ गोली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उबरे तिस जन को करे सब नमस्कार। नानक अनदिन नाम त्याए तू अंतर जिद पावे मुख द्वार। महला तीजा, माया मोहे विसारिया सच मरना हर नाम, धंधा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर से सुख पाया जिन पूर्व लिखिया क्राम। पौड़ी लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सके कोए हार दार सट होई, जम काल मिलेंदे पेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पद प्रगट लोई, नानक अनहद तुनी दरवाजे दे मिलिया घर सोई। श्लोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुखसार, गुर की करनी पौ कटिए नानक पावे पार। महला तीजा, सच पुराना नाती है नाम ना मैला होए, गुर के पाने जे चले बौड़ न आवन होए, नानक नाम सारे आमन जाना दोए। पौड़ी मंगत जन जाचे दान,

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेस ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रगाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लग टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तान, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहे कबीर आराम पज बौरे, जन्म अकारथ।

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना होट माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फोन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगतनी उपजी,

नहीं छूटी। निभर पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोग जाए अब कीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, छाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंद सहज तुन चोक रखाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काजना कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो पुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, करहाओ आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां विसासा इस पांडे का, इत लग लागे ठनका, सागल धर्म पुन फल पावो,

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्छे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेगा, ते हो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस साचै नाए। मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथदान नित नित लेहो।

गुरमुख राम नाम मन पीजे हर सेती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ आत अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई, सच संयम करनी घर कीर्त हर सेती लिवलाई। आपे शब्द तज साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई, देही काची पौन मजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सबका रे लाए सो सच रहा समाई, नानक ना बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई। मलार महला तीजा हौमे बिख मन मोया लद्या अजगर पारी, गारड़ शब्द मुख पाया हौमे बिख घर मारी। मान रे हौमे मोह दुख पारी क्यों।

प्रसाद यो मन गिर ही के यो मन उदासी के यो मन अवर्ण सदा अविनाशी के यो मन चंचल के यो मन बैरागी इस मन को ममता कित्थों लागी। पंडित इस मन का करो विचार और के बोता

परे सदा अलग रहे निर्वाण सो पंडित दरगह परवान सबना में एको एक वखाणे जा एको वेखे ता एको जाने जा को बगसे मिले सोए ऐथे उथे सदा सुख होए कहत नानक कवन विद करे क्या कोए तोई मुक्त जाको कृपा होए आनदन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार मोहल्ला तीजा प्राम प्राण जोन मन मुख परमाई जम काल मारे निदपात गवाई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रा मिलिया मैल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रखाओ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उतार भवजर शब्द लंघावन हार दर साचे दिसे सत्यार बहु कर्म करे सदगुर नहीं पाया बिन गुर परम पूले बहु माया हो में ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाह गुर शब्दी जप

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपहाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड़ मध्य किसे बुझाई, आपे बगसते देव डियाई, जो तुर मिलिया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई।

नींद न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुपाए, नामहीन बिनसे दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए, विण भागा नाम न पाया जाए, बहुबद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार, विख्या मायर

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक लेख लखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए, मलार मोहल्ला पंजवा, खीर धार बारक जब होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, तब ओ तृप्त अघाई, हम बारक पिता प्रवदाता, फूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मिले, माता पिता कंठ लाए रखे, आनंद सहज तब खिले।

हम एक किरत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। यो मन देखिए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सो पाया बन ना सको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देव मिलाई। सागल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरे संसार कठिन पै सागर,

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया। मलार मुहल्ला पंजवा बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। किते उलास आस मिलबे की चरण कमल रस पीवन रखाओ।

आओ। सतगुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राखे, माया बिख फिर बौड़ ना चाखे। गुर की महिमा कसन ना जाए, गुर परमेश्वर साचे नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची। गुर पूरा पाई गेवड़ भाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ तोनत ललत गुनाग अनक पांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संगराम।

मान रे सतगुर सेव समाए वडे पागुर पूरा पाया हर हर नाम त्याए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने पाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के पाने सतगुर पेटिया सब जन्म सवारन हार वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास जमकाल सिरो ना उतर अंतर कपट विनाश हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए नदर करे गुर फेटिए हर नाम से मन आए नानक नामे ही पत उपज हर सोरहां समाए मरार महला तीजा अष्टपदी

रचया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए, हुक्मी लिखे सिरलेख वेण कलम मसवाणिए। सत संगत मेलाप जिथे हर गुण सदा बखाणिए, नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणिए। सलोक महला तीजा, ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन, क्या जाना तिस सहास्यों।

गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया छे भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवन अपना बिना विटो हो वारिया सलोक महला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदार अली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिस नू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करता।

तो सृजी तुदय गोई लख चौरासी मेदनी तुद ही ते होई। एक राजे खान मलूक कहे कहावे कोई, एक सास दावे संच तान दूजे पद खोई। एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई, विण नावे बाजारिया भी हावल होई। ऊड़न खुट्टे नानका सच करे सो होई।

रूप जात जोबन पंजे ठग, एनी ठगी जग ठगया किने न रखी लज, एना ठगना ठग से जे

व अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तो आना तू कुदरती आया, सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

तार अनक स्वांग काशे पेह तारी जैसो सा तैसो धृटारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सज करणी सार कानड़ा मोहल्ला पंजवां तेरो जन हर जस सुन तो मायो रहाओ मने प्रगास पे प्रभ की शोभा जल कद पेखो आयो सब ते परे परे ते ऊंचा गैर गंभीर अथायो ओत पोत मिलो भगतन कौ जनस्यो परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां संतन पै आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो ताटे रोग पय मन निर्मल हर हर औषध खायो अस्त पय बसे सुखताना भौर नकत हूतायो संत प्रसाद तरे पुल लोगा नानक लिवतना मायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना तगल संग हम कौ बन आई जो प्रकीनो सो पल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई सब मैं रव रहा प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा मोहल्ला पंजवां ठाकर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय ले तरना तुमरो बाल तुम संग सुहेले

घर पायो सिर डार्यो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुबन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सदगुरु दृढ़ाया रहाओ नह त्रिवतानो राज जोबन तान बहोर बहोर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सा बुझी है सांत पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई परम होए बेआ प्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा मोहल्ला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख सांत मूर्त सिमर सिमर नित त्याए रहाओ सगल आस होत पूरन कोड़ जन्म दुख जाए पुन दान अनेक क्रिया साधु संग समाए

साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभु के सिमरत दुख जाए रखाओ। ई तूत कहां लोभ आवे, एक सियो मन लाए, मां पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय, सगल त्याग शरण आयो नानक लेओ मिलाए। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, पेख पेग बिसाओ साजन, प्रभ अपना एकांत रखाओ। आन दा सुख सहज मूर्त, तिस आन नाही भांत, सिमरत एक बार हर हर, मिट कोट कसमल जांत, गुण रवंत दुख नस है, रिद पय अंत सांत, अमृतारस पीओ रसना, नानक हर अंग रात। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, साजना संत आओ मेरे रहाओ, आन दा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाए परेर, संत चरण तरो माथ, चांदना गृह हुए अंधेर, संत प्रसाद कमल बिकस, गोविंद भजो पेख नेर, प्रभु कृपा ते संत पाए, वार वार नानक ओ बेर। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, चरण शरण गोपाल तेरी, मोह मान तो परम राख ली जे काट बेरी रखाओ। बूढ़त संसार सागर, उदरे घर सिमर रतनागर, शीतला घर नाम तेरा, पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा, दीन दर्द निवार तारन, हर कृपा निध पतत उदारन, कोड जन्म दुख कर पायो, सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, तन ओ प्रीत चरण संग लागी, कोड जावता सुख पाए, आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ। मुए अनाथ दाह जन तेरा, अबर ओट सगली मुए त्यागी, और परम काटे प्रसिमरत, ज्ञान अंजन मिले सोबत जागी। तू अथाह अद बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूर्ण रतनागी, नानक जाचक हर हर नाम मांगे, मस्तक आन करो प्रापागी। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कुचल कठोर कपट कामी, ज्यो जाने त्यों तार स्वामी रखाओ। तू समरथ सरण योग, तू राखे अपनी कल तार, जाप ताप नेम सुसंजम, नाही इन विदे छुटकार, गर्त कोर अंध ते काढ हो, प्रभ नानक नदर निहार। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कार चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

पंजवां तैन कहा मन कौ कई केत है ऐसो जन बिरलोग है सेवक जो तत जोग कौ बेत रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक है एकी नेत बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किश लेत कहो नानक जान हर हर हर है।

अनक पांद की एक जाली ताकि गंठ नहीं शोर आए फिरत फिरत नानक दास आयो संतन ही शरण आए काटे अज्ञान परम मोह माया लियो कंठ लगाए तानड़ा मोहल्ला पंजवा आनंद रंग विनोद हमारे नामो गावन नाम त्यावन नाम हमारे प्राण आधार है हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना हर नाम हमारे कार्य सवार है हर नामो शोभा नाम बढ़ाई पाव जल विखम नाम हर तार है अगम पदार्थ लाल अमोला पयो प्राप्त गुर चरणार है कहो नानक प्रापय किरपाला मगन पय हियर दरसार कानड़ा मोहल्ला पंजवा साजन मीत सुवामी नेरो पेखत सुनत सबन कै संगे थोरे काज बुरो कै फेरो अरहाओ ना बिना जेतो लपटायो कशु नहीं नाही कज तेरो आगे दृष्ट आवत सा प्रगट ई गाम होयो परम अंधेरो अटक्यो सुबंता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एके पारु सौ बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा मोहल्ला पंजवा बिखे दाल।

संतना हर संतना की रेन हियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े हो।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सदगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सुखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रघाओ जैसी करी प्रा मोह्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान।

गोपाल नानक हरस ना गुण गाए कानड़ा मोहला पंजवा वार वार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इनस्यो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बेहात कानड़ा मोहला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रे प्रीत प्यारो मोरो अरहाओ ग्रे से सुहावी अंगन चैना तोरो रीत तोरो पांच दूतन स्यो संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिग सोरो।

ओंकार सदगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपे तवे सुख पावे सद

गुरु है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तरकुंडे, गुर अंकस सब।

पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तिस नेड़ न आवे बिग चार चार लिवलावे गो स्वान लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कढ़ावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावे गो पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड़ कढ़ावे गो त्राहे त्राई सरन जन आए।

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आज सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मन्या जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया थुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया

एक मनमुख कर हारायण, एक ना मेल गुरु तिन जीता, तारूत मगर प्रभ नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दे सबो लह गया, जा नाव गुरु हर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता, श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो में रोग है, ब्रह्म फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीशर करते, अपरंपर पुरख अतोल, हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो, हारूतम हर नाम अमोल, जिन त्याया हिरदे दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल, वडभागी संगत मिले, गुर सतगुर पूरा बोल, सब त्यावो नर नारायण, नारायण, जित चूका जम झगड़ चघोल, सरोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार, नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार, महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा देख दे, जन नानक कढ़ चन पौड़ी, जल थल मही अल पूरनो, अपर

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतरजामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाव, बसे कटा कट लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बिठुल ऐसा, निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह पंग गुर प्रसाद, रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया, अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भोकिनी, एक तिलनी कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया, उस्तद करे तुमरी जनमाद हो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया, जान कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रव लिखिया रहाओ, गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया, हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया, जनके तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली, सब कर कर चर परया, जेते जी जन प्रव किए, सब कालय मोह ग्रसया, हर जन हर हर हर प्रव राखे, जन नानक सरन।

जप हर गुण अकथ सुन सही धर्म अर्थ सब काम ओख है जन पीछे लग फिर सही रखाओ सो हर हर नाम त्यावे हर जन जिस बड़पाग मथई जय दरगे प्रवलेखा मांग ते छुटे नाम त्याए थई हमरे दुख बो जन्म जन्म के दुख होमे महल लग थई और तार कृपा हर जल ना आए सब केल बिख पाप गथई जन के हृदय अंतर प्र स्वामी जन हर नाम पज थई जय अंति अवसर आए बंत है तय राखे नाम सा थई जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ हर जप्यो जगन थई जन नानक के प्रव राखे स्वामी हम पाथर रख बुड़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी हर प्रव जाने और कोई निंद करे हर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सब ते ऊज ठाकुर भगवान ने हर सेवा ते काल जो है ना सक है चरणी आए पवे हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ता को सुमत दे पैकाने ता को कोई अपर ना सक है जा की भगत मेरा प्रमाण हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ता ते जन कौ अंध पया है रिद सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समर्थ स्वामी एक मांगो तुम पासो हरदाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुझे हर चिराने।

प्राप मुहे कब गल लावें गे रखाओ, हम बारक मुग्ध एयान पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बेगार जगत पिद पावेंगे, जो घर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे, मुहे दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावेंगे, जो घर पावे भगत तिना घर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे हुए किरपाल आप लिवलावेंगे।

परस निपरस पै साधु जन जन हर भगवान दिखीजे सागत सूत बहु गुरजी परया क्यों करतान तनीजे तंत सूत केश निकसे नाही सागत संग ना कीजे सदगुरु साध संगत है निकी मिर संगत राम रवीजे अंत रतन जवेहर मान गुर किरपा ते लीजे मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम्मन को थम।

रामा राम राम पूज करी जे मन तन अर्प तरो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दरड़ी जे रखाव ब्रह्म नाम गुण साग तरोव नित चुन चुन पूज करी जे आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे पूज करी जे विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल बिचर बिचर रस पीजे गुर प्रसाद पदार्थ पाया सदगुर कौ इहो मन दीजे निर्मोल अत हीरो नीको हीरे हीर बिधीजे मन मोती साल है गुर सब दी।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद राग प्रभाती विपास महला पहला चौप दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पद पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अवर स्याण सगली पाज जय बगसे तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मने आए बिर नावे बादी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देश मन किया खुशिया की चैवेश या सदे ता ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवरनास्त करणहार अपार रघाओ पाताल पुरिया एक पार हो वे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वे होर दुखा ते सुख उपजे सुखी हो वे दुख जित मुख तू सालाही है तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित नाम न उपजे से तन होए खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण बेब्रह्मे उचरे शंकर छोड़ी माया जय कारण चित पय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरगे साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हार मत पावे कोई रखाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोड़ पंचासा जे को एक करे चंगयाई मन चित बहुत बभावे एते गुण एतियां चंगयाइयां दे ना पछोतावे तुसालाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओ ना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जाके रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले नर

पांगव हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ। जैसे हरड़ की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी।

पाई, सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनू देवे, तिस वसे मन आए।

अड़सठ मजान सुर मान गुरमुख पावे मान जप मान परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती मोहला पंजवा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख नाम सार हो सेव ओ सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रह निरारा ता तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समागे जल थल मीत सो हर सेवो नीता नीत ता सखाई जे कोई न होवे कोड अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवां, सिमरत नाम किलब सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभु की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने हर

साई मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव माने हाट माने पाठ माने है पासारी माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमाणी सब हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन भीखू बाने भीखे पालते सुख लागला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहेला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहेला तू दयाल रतनलाल नामा साच समायला प्रभाती अकोल पुरख एक चल को पाया गड़ गड़ अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तय मैं किया सो मालूम होई रहाओ ज्यों प्रगासया माटी कुंभेव आप ही करता बीठल देव जी का बंधन कर्म व्यापे जो किया तो आपे आपे परमत नाम देव यो जियो चितवे सो लहे अमर होए सद आकुल रहे प्रभाती भक्त बेणी जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद तान चंदन मस्तक पाती हृद अंतर कर तलकाती ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा कर भगवत बंद चिरामंग क्रूर दृष्टता निस्बादं रहाव नित प्रत स्नान शरीरं दुय धोती कर्म मुख खीरं हृदय श्री संदेहानी पर दर्भ हिरन की बानी छिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत परवेशं पग नाचस चित अकर्मं ए लंपट नाच अतर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजर तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं जिन

लेहे अंत बार संग तेरे एह एक जात है विख्या ज्यों विसार प्रभ कौ जसहिए तार नानक जन कै पुकार अवसर विहात है जय जावंती महला नामा रे मन कौन गद होए है तेरी ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बेखे सो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाओ मांस को जन्म ली।

सेवंत सूरा चदर दिसै, बेखम थान बसंत पूछै, नै सिमरंत मरणं कदांचै, होवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कीटी सास अकरखते, सबदं रतं हितं माया, कीर्तं कली कर्म कृत्वा, मिटंत ततरागत परम मोहं, भगवान रमणं सर्वतर्थानें दृष्ट तोयं, अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना, हर हर हर हरे, नानक प्रियं जाप जपना, पटंत रूपं कटंत दीपं, पटंत रव ससियर नक्षत्र गगनं, पटंत बसदा गिरतर से खंडं, पटंत ललना।

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वचल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है,

तरंग रूपं नाच दुर्लभं दुर्गराजन नाच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नाच दुर्लभं स्वाश अंबर है नाच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभं बनता विलास है नाच दुर्लभं विद्या प्रवीण नाच दुर्लभं चतुर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमण गोविंद है नानक लेप शेपना लिपियत विखया पयंत अमृतं दुष्टा सखा सुवजन दुखं पयंत सुखयं।

कंद मूलं बसंते समीप कह रहे ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं शिदरं कोड़ बिघनं अपराधं केल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समरत है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमं ताकत पिसरंगता सुरजन है अस्तित्तं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भवय पय अटवीयं महानगरवासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक।

रामं नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख

तोप सुगंध परसमानोख देह मलीन मज्जा रुद्र दुर्गंध नानक अथ गर्बेण अज्ञानन परमाणु परजंत आकाश है दीप लो से खंडन कशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध अते जानो सत होवंतो मरणो त्रिटेन मिथया कीत साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मत्रेख बांधव लब्धं सा संगेन नानक सो अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेन निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बसो नानक अंग बुद्ध ना भोते गाथा गोप गोपाल कथं मथं मान मर्दन हतंग पंच स्तरेण नानक हर बाणे परहारण बचन साध सुख पंथ लहंता बड़ कर्मण रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन पत पुरजहेन झड़ियंग न जड़ियंग पेड़ संपता ना बिहून बिखमता नानक बहंत जोन पासरोणी पावनी सा संगेन लभंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर न व्यापण गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोविंद रमणंग साध संगम सुमंत्र साध बचना कोड़ दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण सुंदर मंदर सैन है जीन मध्य हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्ध्यंग बड़ फागण हर लब्धो मित्र सुमितो पिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्तिल तोल अमितो तोई नानक सगा जी संग कितो अब जसंग मिटंत सद पुत्र है सिमरताब हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण है मरणंग बिसरणंग गोविंद है जीवणंग हर नाम तिहावण लबणंग सा संगेन नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून भुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग प्याद उपाड़न संतंग नानक लब्ध कर्मण जद कथ रमणंग तरणंग सर्वत्र जीअण तस लगणंग प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक भव्यंग परा पूर्वण शोभ बचन रमणंग गवणंग सा संगेण उदरणंग संसार सागरंग नानक पुनरप जन्मना लभ्यते वेद पुराण शस्त्र विचारंग एकंकार नाम उर्थारंग उलय समूह सगल उधारंग बड़भागी नानक कोतारंग सिमरणंग गोविंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग सा संगेन नानक बड़भागी पेटंत दर्शन सर्वदोख परंग त्यागी सर्व धर्म तिरंतन है लब्धेन सा संगेन नानक मस्तक लिखेण।

और अचनंत सोमबरंगण है, रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन है। उनहे मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगम।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

मनमाहे नानक बिरही ब्रह्म के आन कतहु जाहे लख घाटी ऊचो करो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नयन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रे प्रेम स्यों पूदना सिमरत अंग प्रगट भयो सब लोम है नानक अधम पतंग।

की कोठरी अंध परे तसुमाहे हौ बलिहारी तिन कौ पैस जो नीकस जाहे कबीर इओ तन जाएगा।

ना है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

की मौज में रहो अंत अर आध। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए।

सूता क्या करे उठ के ना जपे मुरार। एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग। जा के संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ। पेखत ही पुनीत होए भेटत जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जागे भाग। बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीर राम ना चेते हो जरा पहुंचो आए। लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

पंडित जल मुए मूर्ख उभरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

कबीर सदगुर सूर में बायाबान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई।

सदगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नहीं संभव्यो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पाए सतगुर शब्द

कथ कथन हार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संघार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार पहन से जाप धर्म कर्म पूरे सदगुर पाई है हों बल बल जाओ सदगुर साचे नाम पर कमन उपमा देओ कमन सेवा श्रेयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर होर मान बच क्रम जान अंत दूजा ना मान नाम सो अपार सार दीनो गुर तार नाल काव पारस परस कच कंचना होए चंदना सो

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपर लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुरसेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हार जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दुष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल महे रया पूर बोविद वर्णंग सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड़ सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई इंकनी शब्द चंतकार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सके ईस बम ज्ञान ध्यान हरत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेद तरयो हर नाग सहरयो नख बदार जियो संक चक्र गदा पद्म आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीर बसन पुंद दसन प्रिया सिद कंठ मार मुकट शीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਹ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜ ਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਪੁਰ ਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀ।

कार कल्प कार मन गए अंध श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रसदा सलामत कहे न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत तिनको मोह भया मन मत का 84 लख जोन उपाई रिजक दिया सबहु कौ तदका सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जाल आपे

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गहर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर करबे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुरु रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फिरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुर नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

लाग प्राप्त पाई है तो सदगुरु सिमरो नरो जिन शब्द कुमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास तब कीर्त जो संत चरण मुड़ लग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास ये अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कह गुरु रामदास जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो निज बस्त्र घर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रकट सुवास रूप प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लय उपजो जो परगास जे पिकत अत होय रहस मान तोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानेओ इन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंग अंग संग पयो सायर तेन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई थोड़ी सृष्ट सकल तारण कौ अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पय फूले सुध धारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाड़ कीर्त की गुर रामदास राखो शरणाई मोह मल बस कियो काम गए केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अवमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो हुए सो मन पर सागर बंदेओ सिर तारे सो प्रसन्न सिर आद पात सचो तख्त जोग पुग संजोत बल गुर रामदास सज सल पान तू अटल राज अपग दल तू सदगुर चौ जुगी आप आपे परमेसर थुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिलो है आगम निगम उदरण जरा जमे आरो है गुर अमरदास सिर थप्यो परगामी तारण तरण अग अंतक बदे ना सल कब गुर रामदास तेरी शरण सोइये महल्ले पंजवे के एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अभनासी जे सिमरत दुरमत मलनासी सदगुर चरण कबल तारंग गुर अर्जन गुण सहज विचारंग गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत योग को जयतवार हर जन क्यो पायो शब्द गुरु परकास्यो हार रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन खर गुर रामदास भगत पुत्र आयो बड़भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखयो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपौ ठहरायो जनक राज बरताय सतजुग आलीना गुर शब्दे मन मान्या अब तीज पतीना गुर नानक सच नीव साज सतगुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हराए संतोख समाच रहो बेमल बुद्ध सतगुर समाणो आज उन्नी संपवेओ सुजस कल कवीन बखाण्यो गुर नानक अंगद वरयो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जुन वरयो पारस परस प्रमाण जीवन अर्जन अमोल आजो नी संभव पय पंजन पर दुख निवार अपार अनंपो आगे गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुख दातो असंप उद्वयो पुरख पूर्ण विधातो नानक आद अंगद अमर सदगुर शब्द सुमायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मलायो जय जयकार जा जग अंदर मंदर भाग जुगत से रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेद पर सहता
भय पंजन पर पीर निवारण कल सहार तुझ जस भगता कुल सोडी गुर रामदास तान धर्म तुझा अर्जन घर भगता धर्म पीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार घर सम उदार अंग मेव निवारण महादान सदगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत घर नाम मंत्र नमृत नान खुटे गुर राम दातन सर्वमय तय चिंदो वाताण्यो गुर अर्जुन कल उच्चरे तय राजयोग रह जाण्यो भय निरपो माण्यो लाख में अलख लखायो अग में अगोचर गत गंभीर सब गुर परचायो गुर परचे परवान राजमय जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सर सुबर फरायो गुर गम प्रमाण अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उच्चर तय सहज जोग निज पायो अम रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द होमे निवारयो पंचारण दलयो सुन सहज निज कर सहारयो हर नाम लाग जग उधरयो सब गुर दे बसायो गुर अर्जुन कल उच्चर तय जन के कलश दीप पायो सोरठ गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहेथा तो सतगुर संघेत नाम लाग जग उधरयो जगते उदाहरण नाम तब गुरु तुठे पायो अब नहे अबर सर काम बारंतर पूरी पड़ी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तादे अंगद पयो तत् से तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सदगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंज प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन सत रूप सत नाम ससंतोख तरयो ओर आद पुरख प्रतख लिखो अशर मस्तक तोर प्रट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सग सिट लग बेतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बासर रैन बास जा कुहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरुषों प्रेम लाग गयो बे भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्प में अर्जुन गोर भगत के हेत पाए रहो मिले राम स्यो अंत न पावत देव सबे मोन इंद्र महासवि जोग करी हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सिट निहाल करी रामदास गुरु जग तारण कौ गुरजोत अर्जुन माये तरी जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मद चूके रे मन भेद बभेद न जान पियो पर तचर दे गुर अर्जुन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नी पागल लार उदय तब लो प्रमते फिरते बोतायो कल कोर समुद्र में बूढ़ थे कब हु मिट गए नहीं रे पछतायो तत् विचार जय मथुरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अबर न कोई मान भय जिन जान्यो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मय जोत स्वरूपी रहो पार पान मथुरा कछ पेद नहीं गुर अर्जुन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले
ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਏ ਹਰ ਵੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਤੂੰ ਕਵਣ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जोज अपार सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग उला दैत न समझई

ना पदार्थ पाया अटुट परे भंडार। हर गुरबाणी उचर है अंत न पारावार। नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार। गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। इथे ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश। काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए। एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए। जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए। बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलया आए। सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए। नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए। मानमुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। बिन सतगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई। जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई। पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए नौ से मन आई। नांग से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए। आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए। होमे अंतर मैल है शब्द न काढ़े धोए। नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास। ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन न करे विश्वास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा हो सब बलगारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास। माया पुहंगम सर्प है या केरिया बिखमाए। बेका मारण हर नाम गए गुर गारड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए। मिले सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदे घर लिवलाए। निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए। अंतर क्रोध अंकार है अनदिन जले सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल नित पौक दे बिख खादे दूजे पाए। बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए। बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तुझ जाए। हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए। हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए। जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जावे। नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे। चिंता ताप तरे गए तामन पया आनंद। गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद। जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद। नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार। सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार। ऐथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार। गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार। जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार। नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार। जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ। गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह सुमाओ। वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ। जन नानक मंगे तूड़ तेन तो सत कुरबाने जाओ। लग चौरासी मेदनी इसना जलती करे पुकार। यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार। बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार।
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇ ਗਾਰ ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪੜਾ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚਲ ਭਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿੱਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ

हथ न पाए मन मुख से ती संग करे मोह कालख दाग लगाए मोह काले तिन लोभिया जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतर जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ करते।

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राए कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़ै लुजै गुरमुख होए तेस सब के सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो अवदना की तो विचार ओए मानस जून।

हरमंदर वस्त अनेक है नाम निध नाम समाल तन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल वड भागी गढ़ मंदर खोजया

नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार तिनके मुख सद उजले एक सच्चे दरबार तिन बहिंदिया उड़दिया।

संदूर सुहाई सारस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाय सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कई अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्याणपा लख होए ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्मर जाए।

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

जतपहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जत

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तू द्यापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति।

देखा सुपने साउन ना थाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों के वडे आखा नाओ। साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखण आखना, जे भावै करे तुमाए रहाओ। कुसा कटिया वार वार, पीसन पीसा पाए, अग्गी सेती जालिया, भस्म सेती रल जाओ। पी तेरी कीमत ना पवै, हों के वडे आखा नाओ, पंखी होए कै जे भवां, सह असमानी जाओ। नदरी किसै ना आवो, ना किश पिया ना खाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों के वडे आखा नाओ। नानक कागद

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार। जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए। ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजियै नाउ मनियै, अखंड सदा सच सोए। खेहू खेर लाइयै ता जियो केहा होए, जलियां सब सियाण पा उठी चलिया रोए। नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण है, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घट है गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिल है अंक सह लिड़िया, मिलके करे कहानियां सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मै सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी हमें मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखिया आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खेलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वेसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है, मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ उचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुटसी सहज मिलया सुख होए, निज कर महल पछाणिए नदर करे मल धोए। बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास, एको शब्द विचारी है अवर ते आगयास। नानक देख दिखाई है हों सत बलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठी है पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगह झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

बिन गुण काम ना आवई टह टेरी तनखे है मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी आ सिर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दे अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए विनाश। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दर गए पै

मन बैरागी घर वसै सच पै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बाहुड़ भूख ना होए नानक एहो मन।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कस वटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किने ना पाई है रिदमान कमोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सत संगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लग गई यो भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगतना।

मन माणक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटेओ सो पौजल पचै पचाए, एहो माणक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंघीऐ दरगै पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही जैसी निभ है नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना राम।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

करे जहानो, जो तिस पावै नानका हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला, घर चौथा।

गुरमुख पावे कोए, नाम निदाना खुट है वड भाग प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं अहंकार, हर जियो सदा त्याए तू गुरमुखे तुंकार रहाओ। गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी विचार, हलत पलत सुख पाए दे जप जप हृदय मुरार। घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार, सतगुर ते जो मोह फेर है मथे तिन काले। अन दिन दुख कमाम दे नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है आपे बस करे, कहना किशु ना जा वही जिस पावे तिस दे। नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा। सच्चा साहेब सेवी है सच वड़ियाई दे, गुर प्रसादी मन वसै हो मैं दूर करे। एहो मन ता वतार है जा आपे नदर करे। भाई रे गुरमुख हर नाम ते आए, नाम निधान सद मन

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगार सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया, तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही, भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दुइ मूर्ति, शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदिन दुख विहानी। मन मुखे अंध न चेतही, डूब मोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचह मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए। जत सत तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ। दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दो हागण तन सिंगार, से जय कंतना आवई, नित नित होए खुवार। फिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार। भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागण।

अंतरों दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणै जो चलै दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अगै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाए।

आपे जग जीवन सुदाता, आपे बख्श मिलाए, जी जानते क्या विचारे, क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपे दे वड़ाई, आपे सेव कराए, दे कुटा मोए लोभाना, चल दिया नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निदान पाया, तिसदी कीम ना पाई, हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई, हर जो दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई, श्री राग महला तीजा, तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया, विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निधान, मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए रहाओ, कर कृपा कर आया, आपे मिलया आए, गुर शब्दी सालाही है, रंगे सहि सुभाए, सच्चे सच समाया, मिल रहे ना विछड़ जाए, जो कुछ करना सो कर रहया, या वरना करना जाए, चिरी विछुन्ने मेले आनो।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथै जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का सवार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा हो।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर शब्द गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल सच नाए। मेरे मन

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए नेदारा आधार जिस पेख तो किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक त्याईए मन की लहे परांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिए दिन विसरो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुने हदूर साधो काट काट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखशिंद श्री राग महला पंजवां मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहि सवार सर्व कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर राखियो तार मेरे मानो हर बिनया वर ना कोए प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाओ रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक मात पिता सुत बंद पा कूड़े सबे साक जिन कीता तिसै ना जाणई मनमुख।

वन्य पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया।

सहजे शिव तीर्थया भवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाईऐ साधु तूर लूक मावै किस्ते जां वेखै सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन धारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर ने

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह अगमे अपार पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार रहाओ तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

अंबड़ कोई न सकई हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया जय पावे तैं दे।

गणत गणावने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनो साचो मरै ना जाए नित रवै।

चंदन चीत वसाया, मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी, मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी, साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानी, साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए, क्यों पिर बिन रहन विहाए, अंक जलो तन जालियो, मन तन जल बल जाए, जा तन कंत ना राविया, ता बिरथा जो बन जाए, सेजै कंत महलड़ी, सूती बूजना पाए, हों सुती पिर जागना, किसको पूछो जाए, सतगुर मेली भै वसी, नानक प्रेम सिखाए, श्री राग महला पहला, आपे गुणे आपे कथै, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचा मान महत तू, आपे देवन हार, हर जियो तू करता करतार, ज्यों पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना, घट घट डीठिया डीठ, आपे सागर बोए था, आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू, शब्द लंगावन हार, निडरिया डर जानिए, बाजगुरु गोबार, आश्र करता देखिए, हुर केती आवे जाए, आपे निर्मल एक तू, हुर बंदी तंदे पाए, गुर राखे से उबरे, साचे सुन लिवलाए, हर जियो शब्द पछाणिए, साच रते गुरवाक, ते तन मैल न लग गई, सच कर जस्यो ताक, नदर करे सच पाईए, बिना मैं क्या साक, जिनी सच पछाणिया, से सुखिए जुगचार, हों मैं तृष्णा मारक, सच

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै घर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिया निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन।

दुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर भय का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेविए गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिया लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटिया गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाईए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अदको त्यों सुख कणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चातरक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देहे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिले सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सो जी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिले सो मिले जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हो मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिय शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिय अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुले भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागणी ना प्रियंक समाए रहाओ पुली फिरै जसंतरी पुली गृहता जाए पुली डूंगर थल चढ़ाए भरमे मन डोलाए तरों विशुनी क्यों मिले गर्म उठी बिललाए विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावै त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हमें विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए।
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਅਪਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤਬੰਧ ਪਕਰਨਾਰ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਹਉ ਮੋਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਓ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵੇਖ। ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ, ਆਖਣੇ ਆਖੇ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰਬਿਨ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਪੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੇ ਪਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀਐ ਮਨਮੁਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਅਹਿਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ, ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰ।

आहे। गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे, नानक तरिया सच नाम सिरसाहा पातशाह। मैं हर नाम न विसरे, हर नाम रतन वेसा हो, मनमुख पौजल पच मोए गुरमुख तरे अथा हो। श्री राग महला पहला कर दूजा, मुकाम कर कर बैसना निचलन की तोख। मुकाम ता पर जानी है जा रह निचल लोक, दुनिया कैस मुकाम में कर सिद्क करनी खर्च बांधो। लाग रहो नामे रहाओ, जोगी ता आसन कर बह मुल्ला बह मुकाम। पंडित वखाणे पोथियां सिद्ध बह देव स्थान, सुर सिद्ध गण गंधर मुन जन सेख पीर सलार। दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार, सुल्तान खान मलूक अमरे गए कर कर कूच। कड़ी मुहत के चलना दिल समय तू पे पहुच, सबदाहा माहे वखाणी है विरला तांबू जय कोए। नानक वखाणे बेनती जल थल मैयल सोए, अलाहो अलाखा गम कादर करन हार करीम। सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम, मुकाम तिसनो आखी है जिस सिसना हो।

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइयां कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमती सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरै समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुरमुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा भाव न जाने, सतगुर भेटे निर्मल होवा, अंधन नाम वखाणे। एको पड़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने, खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए, सतगुर सेवै ता गत मित पावै, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी से उचित लागे, आवन जान रहाए, पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम पुलाए, लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए, जा ना चेतै ता गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजै, जा सतगुर मिलै सुभाए, मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए, सतबलिहारी गुर अपने विटाओ, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता, प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता, श्री राग महला तीजा, सहजै नौ सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम भुलाए, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए, भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजाए, हर पाया सच सोए रहाओ। सहजे गावे

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना दे वै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोगी।

हौ आया सा मैं ते हंडिया, पंज किरसान मुजेरे मिंडिया, कन कोई कड ना हंगई, नानक बुठा कोग गिराओ जियो, हौ वारी कुम्मा जामदा, एक साहा तुद ते आएंदा, उजड़ थे हो वसायो, हौ तुद विटो कुर्बान जियो, हर इठे नित ते आएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा, सबे काज सवार अन लाहियान मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गोसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शेक जियो, मैं सुखी हूं सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख वेखा लिया, मस्तक तरक हथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुरसिखा लेंदा पालक, पैर धोवा पखा फेरदा, तिस निम निम लगा पाए जियो, सुन गल्ला गुर पै आया, नामदान इस नान दृढ़ाया, सब मुक्त होवा सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाढ़ जियो, सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो, ठोक वजाए सब डिठिया, तुसे आपे लयन छड़ाए जियो, हुण हुक्म होवा मेहरबान दा, पै कोई न किसै रिजाण दा, सब सुखाली उठिया, एहो होवा हले मीरा राज जियो, चिम चिम अमृत वरसदा, बोलाया बोली खसम दा, बहुमान किया तुदी उपरे, तू आपे पाए थाए जियो, तेरिया भगता पुखसद तेरिया, हर लोचा पूर्ण मेरिया, देहो दर्श सुखदातया, मैं गल विच लहो मिलाए जियो, तुद जेवड़िया वरना पालिया, तू दीप लो पया लिया, तू थां थन अंतर रव रहया, नानक भगता सच आधार जियो, हां गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच दुमालड़ा, सब होई छिंज इकठिया, दईये बैठा वेखै आप जियो, वात वजन टमक भेरिया, मन लथे लैंदे फेरिया, नेते पंजवान मैं गुरथापी दित्ती कंड जियो, सब इकट्ठे होए आया, कर जासन वाट वटाया, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो, तू वरना चिहना बाहरा, हर दिसै हाजर जाहरा, सुन सुन तुझे ते आएंदे, तेरे भगतर ते गुणताह जियो, मैं जुग जुग दईया सेवड़ी, गुरकट्टी मेंडी जेवड़ी, हाँ बाहुड़ छिंज ना नचऊ, नानक अवसर लद्दा पाल जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला, पहरे कर पहला, पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा, हुकुम पया गरबास, उर्द तप अंतर करेवन जा रहा मित्रा, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास वखाणा, उर्द ध्यान लिव लागा, ना मर जा दाया कल भीतर, बहुड़ जासी नांगा, जैसी कलम वुड़ी है मस्तक, तैसी जी अड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुकुम पया गरबास, दूजे पहरे रह

जा रहा मित्रा तन जो बन सो चित हर का नाम ना चित ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुट्टे जित हर का नाम ना चित प्राणी बिकल भया संग माया तन स्यों रता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म से ती वापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन स्यों चित चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया बन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुकन हुआ दुआल खिन मैं पया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुनिया खेत।

मात पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंधले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत ने सतारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आप कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंधले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दिसई वन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे भरा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिया हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वन जारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर। हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना पौड़ी। तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे। दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे।

तिन पिछै सब जगत छुटी वे। श्लोक महला पहला। कुदरत करकै वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जां कीमत पाए ता कहीं ना जाए। सरै सरयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा। गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै, जामन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे त्यावै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हों कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रहै, कहु न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक साहेब प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी

मिल मेरे रमैया मैले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्त है न परवेसं। माया मोह ता बिसर गया, जा तजी अले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ। तिन कर दलो करन महाबली, तिन आगर रह मैं रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सन ओरे पंडिया। अब किश कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जन मोहे। त्रिभुवन मेख ली लाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजै। जाकी दृष्टनाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कालक कनक कर सिख पाया। तिसमै तार चोवै त निर्मल, रसमै रसन चोवाया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मैं एको योगी, कहो कौन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सौ परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरिया कै घर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे नर गर्भ कुंडर जब आशत, उर्द ध्यान लिव लागा। मृतक पिंड पद मदना अहनस, एक अज्ञान सो नागा। ते दिन संभल कष्ट महा दुख, अब चित अधिक पसारिया। गर्भ छोड़ मृत मंडल आया, तव नर हर मनो बिसारिया। फिर पछतावेंगा मूड़िया, तू कमर कुमत प्रम लागा। चेत राम नाही जमपुर जाहेगा, जन बिचरे अनरादा। रहाओ बाल बिनोद चिंद रस लागा, खिन खिन मोहे ब्यापै। रस में समेद अमृत बिख चाखी, तो पंच प्रगट संतापै। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या। उछलिया काम काल मतया, लागी तो वान सकत गल बांधया। तरन तेज पर त्रे मुख जो है, सारे अवसर ना पछाणिया। उनमत काम महा बिख भूलै, पाप ना पछाणिया। सुत संपत देख एहो मन गर्बिया, राम हृदय ते खोया। अवर मरत माया मन तोले, तो भाग मुख जन्म विगोया। पुंडर केस कुसमते तौले, सप्त पाताल की बाणी। लोचन सरमै बुद्ध बल नाठी, ता काम पव समाधानी। ता ते बिख

रेण संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिन सीख बोध्या पागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो, माज महला पंजवा, विसर नाही ए वड़दाते, कर कृपा भगतन संगराते, दिन सरैन ज्यों तुद ते आई, एहो दान मुहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई, सबके दिया पलिया जाई, आनंद बिनोद तोज तमासे, तुद पावै सो होना जियो, जिसदा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली शीतल पवना, सहज के रंग करना जियो, सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही, सा मत दीजै जित उत्ते आई, सास सास तेरे गुण गावां, ओट नानक गुर चरणा जियो, माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ग्यान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावै, पाणै पूर ज्ञाना जियो, अमृत नाम तेरा सोई गावै, जो साहिब तेरे मन भावै, तू संतन का संत तुमारे, संत साहिब मन माना जियो, तू संतन की करै प्रतपाला, संत खेलै तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिन कै संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्तिया गाना जियो, माज महला पंजवा, तू जल निध हम मीन तुमारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रक तिखहारे, तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो, ज्यों बारक पीखी रिया गावै, ज्यों निर तन तन दे सुख पावै, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग एहो मन पीना जियो, ज्यों अंधार है दीपक प्रगासा, परता चितवत पूर्ण आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गजाया, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु साई दीना जियो, माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडार नहरिया, अवर साध चक सगले देखे, मन हर रस सब ते मीठा जियो, जो जो पीवै सो तृप्तावै, अमर होवै जो नाम रस पावै, नाम निदान तिसे प्राप्त, जे शब्द गुरु मन मूठा जियो, जिन हर रस पाया सो तृप्तिया गाना, जिन हर साध पाया सो नाही डोलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस सबत जिस मस्तक पा गीठा जियो, हर एक साथ आया वरसाने बहुतेरे, तिस लग मुक्त पय कणेरे, नाम निदाना गुरमुख पाईऐ, कहो नानक विरली डीठा जियो, माज महला पंजवा, निद सिद रिद हर हर हर मेरै, जन्म पदार्थ गैर गंभीरै, लाख कोट खुशिया रंग रावै, जो गुरलागा पाई जियो, दर्शन पेखत पए पुनीता, सगलो दारे पाई मीता, आगमा गोचर स्वामी अपना, गुर किरपा ते सच त्याई जियो, जां को खोजै सर्वियो पाए, वडभागी दर्शन को विरला पाए, ऊचा पारा गोचर थाना, ओ मैल गुरु देखाई जियो, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस दैव सेरा, गुरबंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सह समाई जियो, माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत, हर त्याईया सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोको साधु दिया, किलब काटे निर्मल थिया, अनद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो, जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा, सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे कौ डरदा जियो, जब ते साधु संगत

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़े अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाने जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिस कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किशु ना जापे अपने संतान आप सहाई प्रभु परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भाव है सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई।

माज महला पंजवा अथे तू है अगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तरे ओट तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवण्या आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावण्या। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सा लाही सच्चै मेल मिलावण्या। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहण्या सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावण्या। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानण्या। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावण्या। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावण्या। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावण्या। लेखा पढ़ी जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावण्या। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावण्या। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावण्या। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नहीं चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावण्या। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावण्या जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावण्या। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावण्या। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावण्या। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै न मरना होवै सहजे सच समावण्या। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावण्या।

माया मोहे जोहे जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए तन मन राता सह सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

मेरा गुरमुख होवे सो हम मैं मारे सचो सच ते आवणिया काया अंदर पाप पुन दुए पाई दुही मिलकै सृष्टि उपाई दोवै मार जाए इकत कर आवै गुरमत सहज समावणिया घर ही माहे दूजे पाए अनेरा चानन होवै छोड़ै हों मैं मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंदन नाम ते आवणिया अंतर जो

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख बन जे सदा वापारी लाहा नाम सद पावने आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जै के ई के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावने हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने इस गुफा मैं एक थान सोहाया पूरे गुर हों मैं भरम चुकाया अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले दे सजाए कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने पेयड़ परचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने पेयड़।

आपे देवै सद बुलाए अपना नाउ मन वसाए नानक नाम मिलै वडियाई अंदन सदा गुण गावणिया माज महला तीजा ऊतम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माहे उदासा हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावणिया हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चै सोभा पावणिया रहाओ अलख अपेओ हर रया समाए उपाय न किती पाया जाए कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मिलावणिया दूजै पाए पड़े नहीं बूजै त्रिबद माया कारण लूजै त्रिबद बंधन टूटै गुरसबदी गुरसबदी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वस ना आवै दुबदा लागै दै दिस्तावै बिखका कीड़ा बिख मै राता बिखी माए पचावणिया हाँ हाँ करे तै आप जनाए बहु कर्म करे कि थाए ना पाए तुते बाहर किशु ना होवै बक्से शब्द सुहावणिया उपजै पचै हर बूजै नाही अंदन दूजै पाए फिराही मनमुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया पिर पर दे सिंगार बनाए मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए हलत ना सोभा पलत ना ढोई बिरथा जन्म गवावणिया हर का नाम किने विरलै जाता पूरे गुर कै शब्द पछाता अंदन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावणिया सब मैं वरतै एको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सो है कर किरपा आप मिलावणिया माज महला तीजा मनमुख पढ़े पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते के सूजै नाही फिर जूनी आवणिया हौं वारी जियो वारी हौं मैं मार मिलावणिया गुर सेवा ते हर मन वसिया हर सहज पियावणिया रहाओ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद वखाणै मोहे माया अज्ञान मती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावै गुरमति मन सचो भावै सचो सच रवै दिन राती एहो मन सच रंगावणिया जो सच रते तिन सचो भावै आपे दे न पछोतावै गुर कै शब्द सदा सजाता मन सच्चे सुख पावणिया कूड कसात तिन्ना मैल न लागै गुर प्रसादी अंदन जागै निर्मल नाम वसै कट पीतर ज्योति ज्योत मिलावणिया त्रै गुण पड़े हर तत ना जाने मूलो पूले गुर शब्द ना पछाणे मोह व्यापे के सूजै नाही गुर शब्दी हर पावणिया वेद पुकारै त्रिबद माया मनमुख ना बूझै दूजा पाया त्रै गुण पड़े हर एक ना जाने बिन बूझे दुख पावणिया जात पावै ता आप मिलाए गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए नानक नावै की सच्ची वडियाई नामो मन सुख पावणिया माज महला तीजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत् पछाणै सो पंडित होई आप तरै सगले कुल तारै हर नाम मन वसावणिया हाँ वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर चख है से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो निह कर्मी जो शब्द बिचारे अंतर तत् ज्ञान हौं मैं मारे नाम पदार्थ नौनद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हौं मैं करै निह कर्मी ना होवै गुर प्रसादी हौं मैं खोवै अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगै नित गुरमुख होई इसनान करै सदा दिन राती हौं मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर्वसै हौं मैं मार अहनिस प्रीत शब्द साचै हर सर्वसा पावणिया मनमुख सदा बग मैला हौं मैं मल लाई इसनान करै पर मैल ना जाई
ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਘਰ ਚਾਨਣੇ ਆਪ ਪਛਾਨਣਿਆ। ਆਪ ਉਹ ਪਾਏ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਜਨ ਲੇਖੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦਿਸੈ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵਲਾ ਬਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤਲਾਏ, ਹਰ ਦਰ ਮਹਿਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਾਓ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤੁ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਸਿਆ ਸੰਸਾਰੇ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਇਕ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸਚ ਕਮਾਵੈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਪੇਈੜੈ ਤਨ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਫਿਰ ਪੱਛੋ ਤਾਣੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੈ ਗਾਵਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇਈੜੈ ਤਨ ਕੰਤ ਸਮਾਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ। ਪਿਰਕੈ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਮਿਰਸਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਹਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਿਨ ਕਉ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰਿਆਪੇ, ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤ।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए। आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा। हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता। कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा। कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया। किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अखर जित आवत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता। कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता। धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो। हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा। गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया। गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे। एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा। हर भगवंता ता जन खरा सुखाला। जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या। हाँ वारी जियो वारी, गुरमुख मंतन पावण्या। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या। रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावण्या। सगल मनोरथ तू देवनहारा, भक्ति पाए भरे भंडारा। दया तार राखे तुद सेई, पूरे कर्म समावण्या। अंध कूप ते कंडे चाड़े, कर कृपा दास नदर निहाले। गुण गावे पूर्ण अबनासी, कह संतोट न आवण्या।

क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुझ नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुझ बने अवर न जाननिया। जिस कहो तू प्रभु पया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगे काई। तू साहेब सरण सुखदाता, सतसंगत जब प्रगटा बनिया। तू ऊचा था हुआ पारा मोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला। तू मीरा साची ठकराई, नानक बल बल जावनिया। माज महला पंजवां घर दूजा, नित नित दै संभालीऐ। मूला मनो विसारीऐ रहाओ, संता संगत पाईऐ। जे जमकै पंथ ना जाईऐ, तोसा हर का नाम लै। तेरे कुलै न लागै गाल जियो, जो सवरंदे साई है नरक ना सही पाई है। तत्ती वाह न लगई, जिन मन उठाया जियो। सही सुंदर सोहणे, साध संग जिन बहणे। हर तन जिनी संजया, सही गंभीर पार जियो। हर अम्योर साइन पीवी है, मोह डिठै जन कै जीवी है। कार्ज सब सवार लै, नित पूजो गुर के पाव जियो। जो हर कीता अपना, तने गुसाई जापना। सो सूरा प्रधान सो, मस्तक जिसदे भाग जियो। मन मंदे प्रभ अवगाहिया, एह रस भोगण पातशाहिया। मंदा मूल ना उपजियो, तरे सच्ची कारै लाग जियो। करता मन वसाया, जन्मै का फल पाया। मन पावंदा कंत हर, तेरा थिर होवा सुहाग जियो। अटल पदार्थ पाया, पै भंजन की शरण आया। लाए अंचल नानक तारियां, जिता जन्म अपार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माज महला पंजवां घर तीजा। हर जप जपे मन धीरे रहाओ, सिमर सिमर गुर देओ। मिट गए पै दूरे, शरण आवे पार ब्रह्म की, ता फिर काहे झूरे। चरण सेव संत साध के, सगल मनोरथ पूरे। घट घट एक वर्तदा, जलथल महियल पूरे। पाप बिनासन सेविया, पवित्र संतन की धूरे। सब छड़ाई खसम आप, हर जप पई ठरूरे। करते कियत पाप सो, दुष्ट मोए होए मूरे। नानक रत्ता सच नाए, हर वेखै सदा हजूरे। बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी, कितै ना आवै काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, पठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबूल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया, होवे आनंद कणा। संत जना मिल पाईऐ, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जलथल महियल पूरिया, रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई, कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना पाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। वैसाख तीर्ण क्यों वाडिया,
ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਹ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ। ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ ਦੈਵ ਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैन विहानी पछतानी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एको ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस भावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतरवास रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सत सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता उड़िया हंस दसाएरा आया गया मोया ना पिछे पतल सद्यो का नानक मन मुख अंध प्यार वाजगुरु डुबा संसार महला पहला दस बाल तन बी श्रवण तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पर होए पचासी पग खिसै।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नगरी आया हर इको सूट सुजानी है। पौड़ी तुद आपे जगत पाए कै तुद आपे तंद लाया। मुठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया। तिसना अंदर अगन है नै तिप तै भुखा तिहाया। सह सायो संसार है मर जमै आया जाया। बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया। गुरमती नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना। पैरा बाजो चलना मन हथा करना। जीबै बाजो बोलना ओ जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा दिसै सुनिया जानिए सौ ना पाया जाए। रोहला टुंडा अंदला क्यों गल लगे तहाए। पह के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे। नानक है सियाणीए इवकंत मिलावा होए। पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया। हम मैं गुरु ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया। ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया। इकना बक्सै मेल लै गुरमती तुदै लाया। एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया। होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया। पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया। ओहे अंदरों बारो निर्मले सच्चे नै समाया। श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आलो। कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार। बग्गा रत्ता पी अला काला बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार। ना हाँ ना मैं ना हाँ होवा नानक शब्द विचार। महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै। अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै। अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने। हम मैं विच दुख काले नानक गुरमुख हम मैं टुटै ता हर हर नाम ते आवै। नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै। पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग। जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया। सुख उठे रोग पाप कमाया। हर खो सोग विजोग उपाय पाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए। मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै। महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नामुख सच्चा लाए। ओ हरे मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल है छपड़ ना तै सगवी मल लाए। तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए। ओ आप छुट्टा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सिरिट छिड़ाए। जन नानक तिस बल हारण जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा। एक भगवा वेस कर फिरै जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत शादर भोजन की आसा। बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरो न उतरै त्रिवद मनसा। गुरमती काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा। नानक सतगुर सेवन अपना सियासा ते निरासा। श्लोक महला पहला जे रत लगै कपड़ै जमा होए पलीत। जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाम खुदाए का दिल हच्छै मुख ले हो। अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो। महला पहला जा हो नाही ता क्या खा क्यों नाही क्या होवा। कीता करना कहया कथना भरिया पर तोवा। आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा या गू होवा। नानक कहंदा होए कै दसे राह है
ਸਭ ਸਮੁਹਾਏ ਸਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ ਸੋ ਐਸਾ ਅਗੂਜਾ ਪੈ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਲਖਿਆ ਪਾਰਾ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜੀਐ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤਨ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰਾ।

अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठे पतरिया वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसे ना केरिया, आपन रह मन चेतो कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

सो किश करै, हुक्मे आवै हुक्मे जाए, आगै पाछै हुक्म समाए, हंस हित आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान, भउ खाना पीना आधार, बिन खादे मर होहे गवार, जिसका कोए कोई कोए कोए, सब को तेरा तू सबना का सोए, जाके जी जंत धन माल, नानक आखण बिखम बिचार, गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख, सत भाई करे हो विसेख, कहना है किश कहन ना जाए, तौ कुदरत कीमत नहीं पाए, रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे, करनी कामण कर मन लए, साहा संजोग वियह वियोग, सच संतत

जय कारण तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हाओ ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओह ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर।

गुरमत दे भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड़ियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवार सांझ बयाल, इत उत मनमुख बांधे काल, अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता,

लब लोभ मुझ कूण कमावै, बहुत उठावै पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया।

नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोना रूपा कपड़ केरे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दें दे नीम दिवालो सारी पस मंदिर की टेरी। संचे संचना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मान्या जाना होग तिसै का पाना रहाओ। शव हमारा ठाकर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रात तिसै की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना आगे जम दर बिखम कना रहाओ। उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी साधना अमृत केल करे नित कामनो अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। गौड़ी बैरा गण महला पहला रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। नाम ना जान्या राम का मूड़े फिर पाछा पछताहे रे रहाओ अंता तानो तरनी तरे अंत ना चाहया जाए अंत कौ चाहन जो गए से आए अंत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए कर्मा उपर निबड़ै जे लूचै सब कोए नान करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसै वडाई दे। गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुरप्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाऊं जियो। मैं बनजार न राम की तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ कोकल होवा अंब बसा सह शब्द विचार सह सुभाए मेरा सह मिले दर्शन रूपिया पार। मछली होवा जल बसा जी जंत सबसार उरवार पार मेरा सह बसे हो मिलोगी बह पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे पव जाए नानक सदा सोहागणी जन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी देव की महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होय बिचारो तितकर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे नरपौ का सोहेला हों वारी जाओ जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालिया नो देखै गा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़ियां जो हुवै सैब स्यो मेल। कार कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग गौड़ी गुआरे री महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वै सोई मेरा प्रभ सब विद्यापे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पै राचै सच रंग समाए रहाओ गुर मिले हर मन वसै सुभाए मेरा प्रभारा कीमत नहीं पाए। शब्द सलाह अंत ना पारा वार मेरा प्रभ बख्से बख्शनहार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए साच वसै साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते।

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस चाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती गुर

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी गुआरे री महला तीजा एक गावत रहे मन साध ना पाए हमे विच गावे बिरथा जाए गावन गावे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मंतन राता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पर राखिया सदा उतार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच टपे बहुत दुख पावे नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वच्छल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वड्याई गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ गुरम करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैंगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन या साध साधे जन कोए अचर चर ता निर्मल होए गुरमुखे हो मन लिया सवार हमे विचों तजे विकार जो तुर राखिया नु मेल मिलाए कदे न विछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे

गुरमुख नाम निधान लै दरगह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आ पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेय पिर वसै कहो किद बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मिलाइय रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाईऐ हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक।

जब गुर मिलया तब मन वसाया, तावत पंच रहे हर ध्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिव लाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लगते आवै, नानक गुरमुख हर आप तरावै। गौड़ी गुआरे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विकसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आपी आवनहारा, हर आप करे आपे निस्तारा। हर आपे बेड़ी तुलहा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावै पारा। गौड़ी बैरागण महला चौथा, साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावै, दे रास रे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जागाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया, फल तेहा तिन पाया।

ज्यों जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए तन खाड़ दे कर भोग बिलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया। जन की उपमा तुझै वडैया रहाओ, मंदिर घर आनंद हर, हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै, जा हर गुण गावै, हर जन परिवार सधार है, एक ही कुली सब जगत छुड़ावै, जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई, हर जी तेरे तू मरतदा हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई, लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है हर की वड्याई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, किरसाणी किरसान करे लोचै जियो लाए, हल जोतै उद्यम करे मेरा पुत ती खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिडाए, मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम, गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ, लै तुरे सौदागरी सौदागर तावै, तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै, त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया बै हट कमाए, मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए, एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास, गुरमति

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे हर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा हारा

पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगै, जिन विछड़िया हर गल आया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हिरदे नाल दिखाया, सहजानंद भया मन मोरै, गुरे आगै आप विचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजा सबदा नहद, गुरमत मनुआ गावे, वडभागी गुर दर्शन पाया, तन धन गुरु लिवलावे, गुरमुख हर लिवलावे, रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा, मन गुर की कर कमावे, हम मलमल धोवे पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायण, जेवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रसिया गाने, फिर बहुर ना पूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो, वडभागी मिल सुगण सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग भिन्ना, आवो संतो मिल नाम जपाहा, वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियाड़े तुरकर्मा, सावण वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामण करीहा जियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठे टोल टोल मिलिया जियो, मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो, मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो, मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो, हर विटड़ियो सदा कोले जियो, वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो, मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख विगस जियो, हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन अनदिन अनदर हस जियो, हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा, नित लै लाहा मन हस जियो, हर आपो पाए हर आपे वेख, हर आपे कर लाया जियो, एक खावे बख्स तोट ना आवे, एक ना फुका पाया जियो, एक राजे तख्त बह नित सुखिए, एक ना पिख मंगाया जियो, सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो, हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपूरा लख लखाही जियो, हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दाल दो दुख लह जाही जियो, हर

सगल कढ़ाके अंतरजामी सर्व सुखा सुख साचा ए हो गुर उपदेश मन में ले हो जा कहो राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वडभागी गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा सुना।

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भये जन्म जन्म के किलवख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहो सब जाए। गुर पूरै सब भ्रम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए। ओह बेला का चीत न आवै बिनस जाए ताहू लपटावै रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राय मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर हमरी भूम कौन का लै पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा करने हर न बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जान क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। आनक जतन नहीं होत छुटारा बहु सियाण पे अगल पारा। हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह सोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जस आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। बहुत दर्ब कर माना या गाना अनक रूप देखने पतियाना। पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी। बिन हर भजन देखो बिल्लाते त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै तिसके पालै कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस को करे बोरंगी। कहो नानक जिस पै कृपाल, गुरपुरे ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है। प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव रहाओ। तुद पावै ता गावा बाणी, तुद पावै ता सच बखाणी। तुद पावै ता सतगुर मया, सर्व सुखां प्रभ तेरी दया। जो तुद पावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावै सो सत धर्मा। सर्व निधान

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधु, चाखत होए रहे बिस्मादु। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हू जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पितर।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जा मेले साहे, कहो नान गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिनस रह करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जान बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिस सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का हुए ध्यान तरते, संतन की महिमा कमन बखाना। आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात तू

उतना जो है माया मग्न कछु है मोह है उधर आप तरह संसार राम नाम जप एकंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथा हो निदान सोई पुरख जप भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हों तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वालेरी महला पंजवा चौपदे दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। जो प्रायो सोई अपना जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिली है के है। जो बिबर्जित तिस्यो ने है रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बुनना दुहा सरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा कल युग में मिले आए।

रे मन मेरे तू ता को सेव आद पुरख अपरंपर देव तेसी उपर मन कर तू वासा आजुआ जा का प्रवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावै गुरमर सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करै सोई हम मान।

हमारा अंतर्जामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दास तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जा को तुम दीनी प्रभ धीर, ताकै निकटन आवै पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा। दुलभ देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद महे समाया। गौड़ी महला पंजवा। काकी माई काको बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारे हो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पाए बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी

पार ब्रह्म अपरम्पर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवां कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजै काए कर किरपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवां तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किस तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सुख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवां ताका दर्श पाई वट भागी जां की राम नाम लिव लागी जां कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन्मा है ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कहो दीजै गौड़ी महला पंजवां हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन दर करे गौड़ी महला पंजवां हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सदगुर मिल लिस्ता।

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर धन को व्यापारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीओ प्रप्यारी। रहाओ सुख सह

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन।

साधु संग करो सबको, ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। प्रांबिन से गाए गुणनीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जाका सिमरन जमने डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभु दया निवास।

गई ब्याद उबरे जन मीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ। शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तहारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तन ओ मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईऐ, रसना राम नाम जस कहियै रहाओ। तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जप

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवे हथ दाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे का सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संगराते पाहे ना जलै, हर संगराते माया नहीं छलै। हर संगराते नहीं डूबै जलाओ, हर संगराते सफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुन गाए रहाओ। हर संगराते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साधका मंता। हर संगराते जम की नहीं त्रास, हर संगराते पूर्ण आस। हर संगराते दुख ना लागै, हर संगराता अंदन जागै। हर संगराता सहज कर वसै, हर संगराते परम पौ नसै। हर संगराते मत उत्तम होए, हर संगराते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रम मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम कर

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्स, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आप पए, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित्र गुण गाय गोपाल, पाप मिटाय साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम्य अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानको प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदय बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे अराध मेरा मन धीरा रहाओ। आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पय सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवकी आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पार है बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए। रहाओ आप मन बसिया करने हारा, पै बिरसे आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे। कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूर्ण पाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे। पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रहनी। है कोई संत मिलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की। अनक पांत करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले। बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर। जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट हर नानक। जन्म कृतार्थ सबल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सह सुखदाता, मोहे मार्ग दे बताई। रहाओ अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। एक बसद बिन पंच दुहेले, ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यो पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन विद मिलै गुसाई, सहज पया प्रम खिन मैं नठा। मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै। सतगुर मजै बतायो, रहाओ जात का देखो ताता तुम ही। मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती। जो सुनतो है रगरायो, लयो सहसा बंधन गुर तोरे। ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी। सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा। गुर पर्दा खोल दिखायो, नाव निद नाम निधान इकठाई। तो बाहर कैठ जायो, एक कनक अनक भांत साजी। बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है। इव तत् तत् मिलायो, गौड़ी महला पंजवा। औद कटै

मन गुरमन का सवारे रहाओ, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला इहां खड़ चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला, एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी, जां को आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण।

ले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते प्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हम मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा अवरना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो साध संगत कै पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछै।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहजे अनंत ना संग उन संसार अवर नाम दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दिस सब केश युग में काटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ। नौ खंड पृथ्वी इस तन में रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा। पंच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग्नि आज्ञाकारी तब निर्मल योगी थिए। परम जराय चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भूता जो ठाकर मस्तक लेखिया। जै पौ नाही तहा आसन बांधो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखे ओ जुगत नाम मन पानी। ऐसा योगी वडभागी पेट माया के बंधन काट सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चट। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जां को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते गुर शब्द दीपक प्रगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जां को साध संगत विश्वासा। तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोइथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा। गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्तिया गाए नानक हर जियो ताको देवै जाको हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहया ना सरण प्रभ तोरी अंध कू मैं हाथ दे राखो कछु सियाण उक्त न मोरी। रहाओ करन करावन सब किस तुम ही तुम समराथ नाही अनहोरी तुमरी गतमित तुम ही जानी से सेवक जिन पाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रवराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाह जैसे दृष्टो चन चकोरी। राम संत मैं भेद किश नाही एक जन कई मैं लाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ होवा अन दिन कीर्तन रस नर मोरी। तुम समराथिया पार अतूचे सुखदाते प्रभ प्राणिया दोहरी नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राते संतो निभाए ले हो मोको पुरख विदाते ओढ़ पहुंचा बो दाते। रहाओ तुमरा मर्म तुमाही जानिया तुम पूर्ण पुरख विधाते राखो सरना ना दीन को करो हमारी गाते। तरन सागर बोध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे ते ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समर्था सबके तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जनो चले हमारे साथे। निर्गुणी आरे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा गौड़ी महला पंजवा सहि समायो देव जा को सतगुर पय दयाल देव। रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरे दिखायो। पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मंत्र बतया अन पै ठहरायो।
मान आग्या सर्व सुख पाए दुखै ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाइए रे जो प्रभ करै सोई पल मानो सुख दुख ओही त्याइए रे कोट पतत उधारे खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर दुख पंजन स्वामी जिस पावै तसै निवाजै रे सबको मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तस करते पूर रहे रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास तांकी सरनाई जाते बिरथा नाम कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबू न मनो बिसारे इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ महा कष्ट काटै खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरनी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पार उतारे चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे काम क्रोध लो मोहे मन लीनो निर्गुण के दाता रे कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन मोलक साध संगत जप एक खिना रहाओ सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बहु लोग पोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोवा चंदन दे फूलिया सो तन तर संग रूलिया

हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोइथ पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया बसरियत कनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेट परंपो खोया कहो नानक एक ते आया कट कट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले गौड़ी महला पंजवा जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है वड्डे पाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है। अहु बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा कर नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ। करन करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सोलो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रमतो प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पय। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खय। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम लय। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरै प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसै, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जो होए कृपाल ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाई है। जा होए दयाल सतगुर अपना, ता हिम्मत बुद्ध पाई है। मेरे मानो नाम लय, जम बनते छूटे। सर्व सुखा सुख पाई है, सेव स्वामी सतगुर दाता। मन वंचित फल आई है, नाम इष्ट मीत सुत करता। मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सदगुर अपने की। गुरते पाइये पाले, गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी। बिनसे सर्ब अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन। मिट्यो सगल कलेसा, राग गौड़ी महला पंजवा। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, त्रिष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे ला

पर ग्रह बेकारी बुरा पला नहीं सुजी है। अनक बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं गाया मन बिखै ही मैं लुजी है। जां कौरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन।

ओहि पाठी ओहि पोचा ओहि प्यारो ओहि रुचा मन ओहो सुख जातो सहज केल अनद खेल रहे फेर पय मेल नानक गुरशब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयान रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल होम जग तीर्थ किए बिचहु मैं बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जाओ लो हाउ के सोचो चितवाओ तौ लो दुखन भरे जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हो किए ते ते बंद परे जब साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए जौ लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए।

मन जीतो जग सारी, तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चुके अखुट खजाना सतगुर दिया, टूट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे भाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे पर्दा ठाकर जाओ भेटियो तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई यो अचंभो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच भय बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते धरनी रहाओ, सात सिमरत वेद बिचारे, महापुरख ने ओ कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लहया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, बुझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां थित पावै, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूर्ण होत ना कामा, जल तो कबहू ना बुझत, सगल बिरथे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, एह सार सुख पूरा, साध संगत जन मरण निवारै, नानक जन की तूरा। गौड़ी माला महला पंजवा, मोको हिबद को समझावै, करता होए जनावै रहाओ, अनजानत किश इन कमानो, जब तब कछु ना सादा, दह दिस लैओ मन दौरायो, कवन कर्म कर बादा। मन तन धन भूम का ठाकर, हाँ इसका एहो मेरा, भरम मोह कै सूझ सुनाही, एह पैखर पै बैरा। तब एहो कहां कमावन परया, जब एहो कछु ना होता, जब एक निरंजन रंकार प्रभु, सब कछु आपै करता। अपने कर्तव्य आपे जाने, जिने और रचन रचाया, कहो नानक करण हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा, हार बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संयम कर्म कमाने, एह और मूसे रहाओ। बरत नेम संयम में रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चरण और है भाई, ऊहा काम न आया। तीर्थ नाय।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त

वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावे माया मोह महा संकट बानो तासो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावे नानक मुक्ता है तुम मानो जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा अहन से औद कट नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे कशु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिखठाक रहाया उल्ट पई जीवित मर जा गया शब्द रवै मन हास्यों ला गया रस संग्रह बिख पर हर त्या गया। पाए बसे जमका पौ भाग्या साद रहे बादम अहंकारा चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोय न देखो मीत किस सेवो किस देव चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भगतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम भुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी गुआरेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरे अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान चतराई नह।

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुर ते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचते विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह न ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हर सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदे मुरार, नगर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौ मैं करत्या न सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नेह केवल निरपौ ना, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचे शब्द उदर निशाणे, शब्द मरे तिस निज करवासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसे सो

ऐसो दास मिला सुखोई, दुख विसराए पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरण धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलाखा पेवा, जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगड़त जग काचा, गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा।

ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है। रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी। हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत ना पाए अपेवे, आप लाए आपे मत देवे। दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड सिंगार करै अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

जे सिद्ध कहावाओ रिद्ध सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हों मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्या त्या गै कवरे भाई मिलै सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जार है सो उबरै गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना मिर्ग मरै सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चितै कामण हितकारी क्रोध विनाशै सगल विकारी पत मत खोवै नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यो तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पिर तृप्त ना कबू होई पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यो चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पस्म लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावै नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे

आए गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पात नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामै झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अगे हर नाम सिखाई। राम पढ़ो मन करो बिचार, गुर प्रसादी मैं लियो तार, रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए। हाँ मैं मैला एहो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए हंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा जे हों मैं मारे, गुर कै शब्द पंच संघार, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई।

मेरा प्रभ निर्मला सब तैरया सुमाए। गुर कृपा ते मिलाए मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोह गुवार। तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए। हर नाम बिना मैं अवर ना कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई। हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिवलाई। गुर मिले हम कौ शरीर शुद्ध पई, हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई। बिन से क्रोध खिमा गै लई, हर आपे कृपा करे नाम देवै। गुरमुख रतन को विरला लेवै, नानक गुण गावै हर लाखा पेवै। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी बैरागण महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फेरे, ते वे मुख बुरे दिसन। अंदर बदे मारियन, फिर वेला ना लहन। हर हर राखो कृपा तार, सतसंगत में लाए प्रभ। हर हृदय हर गुणसार रहाओ, से भगत हर पाम दे जो गुरमुख पाए चलन। आप छोड़ सेवा करन, जीवित मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है, तिसकी सरकार। ओ क्यों मनो विसारी है, हर रखिए हृदय तार। नाम मिले है पत पाई है, नाम मन्ने सुख होए। सतगुर ते नाम पाई है, कर्म मिले प्रभ सोए। सतगुर ते जो मोह फेरे, ओए प्रम दे ना टिकान। तरत असमान ना चले, विच विष्टा पे पचान। एहो जग परम पुलाया, मूठ गौली पाए। जिन्ना सतगुर पेटिया, तिन नेण ना पिटे माए। सतगुर सेवन से सोहने, हाँ मैं मैल गवाए। सबद रते से निर्मले, चले सतगुर पाए। हर प्रभ दाता एक तू, तू आपे बख्श मिलाए। जन नानक शरणागति, जो पावै तवै छड़ाए। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, कर हरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर हले मन परदेसिया, क्यों मिलिए हर माए। गुरपाग पूरे पाया, गल मिलिया प्यारा आए। मन करहला सतगुर पुरख ते आए रहाओ। मन करहला विचारिया, हर राम नाम ते आए। जिथे लेखा मंगिया, हर आपे ले छाए। मन करहला अत निर्मला, मन लागी हम आए। प्रतख पिर कर नाल प्यारा, विछड़ चोटा खाए। मन करहला मेरे प्रीतमा, हरदय पाल पाल आए। ओ पाए कित ना लभई, गुर हृदय हर देखाए। मन करहला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए। कर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए। पाखंड लोभी मारी है, जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू, मैल पाखंड परम गवाए। हर अमृत सर गुर पूरिया, मिल संगति मल ले जाए। मन करहला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए। एहो मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे साजना, हर खर्च लिया पत पाए। हर दरगह पहनाया, हर आब लया गल।

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जा कै सहज मन भया आनंद, ता कौ भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, ता कै संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, ता कै कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जा कै सहज भया सो जाने, नानक दास ता कै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटम संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टर, कवन शब्द जे दुर्मत हर रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी गा होएगा काला, त्रै गुण माया बिरस बिताला। गिरतर तर

तीर्थ देव देहो रा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत पर साधन भोगा, गवन करै गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर कर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दी सह पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निश्चर सजथाना, तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सदवसै, तह पौ भरमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता, तै सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करै ता का विचार, कहो नानक जिस कृपा करै, निश्चल थान साध संगत रै, गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोय जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै, रहाओ जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगह सजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निचल तनी, जो इस मारे सो वट भागा, जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सुगयानी, जो इस मारे सो सही ध्यानी, इस मारी बिन थाए ना परै, कोट कर्म जाप तप करै, इस मारी बिन जन्म ना मिटै, इस मारी बिन जमते नहीं छुटै, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जौला, जां कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जां की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वड़े वड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखिन मैं उदरै, कोट मज्जन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिनस जाए माया के हेत, हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कह रंग, जा कह काम उतरै सब भूख, जा कह कामना जो है दूत, जा कह काम तेरा वड गमर, जा कह काम होवै तू अमर, जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कह दफ्तर पुछै ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा, जा कह उन नाही काहू बात, एक आपा ने कह पात, जा की दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर नाही को मूड़ा, ना को हीण नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी, त्यों जीवै साक्त नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा थिरथिया, रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास, बिन सिमरन पय कूकर काम, सागत बेसवा पूतन नाम, बिन सिमरन जैसे सींग शतारा, बोले कूर सागत मुखकारा,
ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦਭ ਕੀ ਨਿਆਹੀ ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਹਿਟ ਫਿਰਾਹੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਓ ਮੋਹੇ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਥਾਓ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਮਖਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲਹਰਾਓ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਚੂਲਾ ਵੋ ਪਾਖਾ ਮਹਾਂਯਗਨ ਤੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मैं रोग। नाम त्याग करे अन काज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पानी अन्न ना पावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावै, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़क सत भरिया, गलताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता आप गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसन आपै सुनत आप ही जासन आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखम आपै असूला लखी ना जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला रहाओ। सलोक निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखानो नानक एक अनेक। पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूह पानते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा। सलोक सही साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन ना को सो सरन परै जे पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहं को जापत सो सा

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते ऊजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना आछ अत प्रे प्रीत साध रज राच तंदे कहा ब्यापै ताहू जो एक छाड़ियन कते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेखर ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग न हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट में बिन बूजे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक कौ आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रवरते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन सुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप पस अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो

श्लोक राज रहे बनता विनोद कुसुम रंग बिखसोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एऊ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझे सो प्रभ सधू संग लेखे

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना हरे रे दरगह कह ना को आओ बैठ आदर सुभ देऊ ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरण होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया।

लगना नानक ठाकर सदा अलिपना श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैराता, जाको दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो नाया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन हो आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सो धिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिरसत नाही, पासे ती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़ शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का।

जा कौ साध कृपाल साधु संगतो बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे वहां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै शब्द पछान। ओवा डेरा या डेरा कौ श्रम कर कालै जा का तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जा को दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न काल्यो बंद नानक उभरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभस बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जा मैं जा मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तूने छुटे निकट ना जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिय आत्म जीतै कोए हम मैं अनस्यो लर मरे सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरे गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेसु रतन वेस। अना को जाने अपनो एक टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रपुरख अपार। रेण सगले या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बुझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिला वै मोहे नानक परम पौ काटिया चुकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु ना होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथया नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रह।

दें दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जा।

कार्य आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास। तन साचा तेउ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी। नन्ना नरक भरै ते नाही, जा कै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते। नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे, तैं बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज परपंच मोह बेकार, नानक सो आराधिए अंत ना पारा वार पौड़ी। पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु। पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोउ, नानक दूसरे अवर ना को। श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी। फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कलयुग मैं पाया, फिर या ओसर चरै नहाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे। श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस।

याय उबरन तारे सबको वाहे जपे बिन उबर ना हो याहु तरन तरन समराथा राख ले हो निर्गुण नरनाथा मान बच करामो जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगट।

पूरी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जां कै सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे हैपी हो वनहार हे संतें कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरौ जास विषम पर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला
से सिमरै जने आप सिमराए नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंत प्रभ को सिमरै से पतवंत। प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कौ ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सगले आकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ या नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महापयान दूत जमदल तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना परै हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत अगावै। जेह मार्ग हो जाता केला तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाए आए संघारे हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हौं मैला मल कबो न धोवे हर का नाम कोट पाप होवे। ऐसा नाम जपो मन

तय नानक हर हर अमृत बरखै, भक्त जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मन तन रंग रत।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया टरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही।

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे। जे

बालो रै साध संग ए मैं शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल सिठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरत

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जे प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोबावै। जे प्रसाद सुख से सुई जै, मन आठ पहर ताका जस गावी जै। जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगे मान पावे, नानक पास सेती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे हे। जे प्रसाद या पूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सह समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमाहे सुमानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हवताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान उचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।
साध कै संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रस है। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तर है। साध कै संग लगे पर मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

चार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत ना पावे कई कोट पै

कई कोट पर दर्ब कौ हेरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सबहू ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगति लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आतुम मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रमहे समात, ताका अंतना जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारा एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहि समावै, अपने जन को सास सास सुमारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योत पावे सोई होग, खिन मैं थापो थप नहारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रह समाई, प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पत तो धारै, आप करै आपन बीचारै, दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै, परमे पूला दे दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै,
कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले। खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत या बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावै सोई फुंथियो। कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावनहार। कबहू निरत करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की होत रवाल। कबहू होए बह बड़ राजा कबहो पेखारी नीच का साजा। कबहू अप कीरत मह आवै कबहू पला पला कहावै। ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू से साधु मो ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमै परमिया। नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावै। ज्योतिष पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संग ते हो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसका अंतर राजा मान सो नरक पाती होवत सवान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कौ कर्मवंत कहावै जन्म मरै बह जोन परमावै। तन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक यहां मुक्त आगै सुख पावै। धनवंता होए कर गरबावै तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी धर्म राय तुस करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिटै अभमान सो जन नानक दरगै परवान। कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगै कौ कैसे गवै। आपस कौ जो पला कहावै तसै पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए तब इस कौ सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे।
सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए वडभागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहां विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबहू कै संग बुझे देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिनसे आवे ना जाए नानक सदी रहा समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब के साथ आप कीनो अपन विस्थार सब कश उसका ओह करने हार उसते पिन कहो किश होए थान थन अंतरे कै सोए अपने चल

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत, किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दोखी की पुजे न आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना तृष्टा कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उसत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब कश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह बिचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, वडभागी नानक जन से सलोक, तजो सियान पसुरजना सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक बिरथी सब जानो, देवन को एक है भगवान, जिसके दिया रह अगाए, बहुरना तृष्णा लग आए, मारे राखे को आप, मानु कह किश नहीं हाथ, तिसका हुक्म भू सुखोए, तिसका नाम रा कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, वड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे बिचार, सेतनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, एत उत कियो सोजी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, आंदन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ही ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जसमन भूख, नानक तुसे ना लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवको किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया, जब देखो तब सब किशमूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, न कि जन्म न किश मरे, अपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्टि अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप,
अनक जुगत रचथाप उठाप अबनासी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगले उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का सबज पै निहाल उनकी सेवा सोई लग जिसनो कृपा करै बड़भागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहि सुभाए होवै सो होए करणै हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साव तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तस्महे समाए ओए सुख निदान उनहु बन आए आप सको आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी।

सुनत कह तो रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उत्तर समैल बिन सजाए हों मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रह सार नाम समाल छाड़ सियानप सगली मना सा संग पावै सजतना हर पूंज